0: मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दो राह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: कोट यार तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्राव, तोर विवाह होने वाले है, तोर शादी होने वाले है, या किसी का मुंडन संस्कार है, उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं। 15 फरमाइश फोर मार होने तोरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl।

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 15 तारीख के मई का प्रोग्राम। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आरजे रशिदे, थैंक यू आरजे। यहाँ से लेकर ठीक 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से भी खोले जाएंगे, जहां का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
हमारे प्यारे सुनवलो, मैं हूँ सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक मैं आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूँ। खुद मोर खल मार फ्राइडे वीकेंड करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुकल है 9:03 ऊपर नीच। वेलकम आलम एक बेंदर तो 12 फदाख या तो चलिए प्रोग्राम को आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन के साथ आप सभी सुनने वालों के लिए।

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजान रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजान रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजान रेडियो

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 71 साल की आयु में एनसी फंतख यार और लड़कन रॉबर्टो गणपत सिंह त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी अम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। क्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थे। अम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सोमवार को 71 साल की आयु में एनजीफन तखियार और रॉबर्टो गणपत सिंह त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी अम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शुक्रवार की रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। फनाफन फन हालफ जीफन तो थालफाख्त उत्फर्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 1:30 बजे जोन द खानस्टांड हालफ त्वे किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार छुटकन और परिवार गणपत सिंह के दुख में शामिल है।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

और जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, फिल्म ठोकड़ का गीत। और आप सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से, इसी फिल्म ठोकड़ से निकाला हुआ एक और गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और ये उजाला रेडियो है।

प्रोग्राम में सुनेंगे कुमार सानू जी के जरिए अलका याग्निक भी साथ देंगे कि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

उजाला रेडियो दे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

go, जबकि शनिचर है 16 तारीख मई है मॉर्गन जाटरडग 16 मई को बोधग्राफ के रहने वाले दुल्हराजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागिनी जंगी के विवाह संस्कार होने वाला है। विवाह संस्कार के पर बधाइयां शुभकामना पेश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे।

Michael Sanitier, solo Tariq Michael, Bode Graven kregen wel Dulhiraja Wesley Akash Gopi, en Rotterdam kregen wel Dulharani Suragni Jungi Kiwi was ons kaar hun wel een goeie gemaakt per mama Anita Harkhun en papa Jerry Gopi piara piara beta klim. दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ प्यार दुलार के साथ फरमाइश की गए वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन डीन शाया एंड डेली की तरफ से मामू के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश करें सुनिए आप

Bodegraven krijgt nu wel een Wesley, Akash Gopi. En Rotterdam krijgt nu wel Idul Hamrani. Suragni, Jangike, Vivasans Karkal. Bari Dhumdham gezaad honen wel. Hey, schoesjeke maakkeper. Didi, Karishma, Gopi, Chota Bhaikli en Lurken. Damien, Dean, Chaya en Daily Ketrefse. Mamukli, Badhaya, Shubkamna, Pyar, Mahabbat gezaad van Waashke. Hoi, Wesley, Akash Gopi en Suragni, Jangike, Vivasans Karkal. Bari Dhumdham gezaad honen wel. Hey, खुशी के मौके पर दुल्हन राजा वैसली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी होने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के वास्ते प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश करे हैं।

बौद्ध ग्राम के रहने वाले दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोतदम के रहने वाली दुल्हनानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन दुल्हनानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नमक को फरमाइश के वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल है। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भैया के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश करें।

बौद्ध खराब के रहने वाला है वैसली आकाश गोपी एंड रोतदम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ फरमाइश के वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। इस खुशी के मौके पर फरमाइश कर रहे हैं सुन वालों मामा अनीता हर किसुन एंड पापा जेरी गोपी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाई या शुभकामना प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

फोटोग्राफ के रहने वाला है और वो भी खासकर दुल्हराजा वेस्ली आकाश गोपी और रोतोदम की रहने वाली दुल्हनवानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशुन एंड पापा जैरी गोपी प्यार प्यार बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल होने वाला है बड़ी धूमधाम के साथ। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार 16 तारीख मई 16 मई को होने को जा रहे हैं। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी, छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ बधाई के साथ फरमाइश के प्यार मोहब्बत की बयां आप सुनने को जा रहे हैं। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा हैंडसम सा दूल्हे राजा वैसली अपनी प्यारी प्यारी होने वाली ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी सुरागनी के लिए प्यार मोहब्बत के साथ अर्ज करें। प्रोग्राम सुनिए।

Wesley, Akash, Gopi en Suragni Jangi ke vivaan sanskar kal hone wala hai 16 mai ko khushi ke mauke par dulhe raja Wesley, Akash, Gopi apni pyari pyari hone wali dulhanani Suragni ke liye badi pyar mohabbat ke saath nahma ko farmaish ke इस बार डेमियन दीन शाया एंड डेली प्यार प्यारा मामू वैश्ली आकाश गोपी के लिए नहमा को फरमाइश करें जिनकर विवाह संस्कार कल होने वाले हैं रोटरडम के रहने वाली सुरागनी जंगी के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा पेश किया जा रहे नाम डेमियन दीन शाया एंड वैश्ली की तरफ से मामू के लिए प्यार दुलार के साथ

0: बहुत खराब के रहने वाली वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हनानी सुरागनी जगनकी के विवाह संस्कार 7-16 मई को होने वाला है। खुशी के मौके पर लड़कन डेमियन डीन शाया एंड डेली मामू के लिए पेश किए दुल्हनराजा आकाश या कहे वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हनानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर बधाइयां और शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। बधाई हो।
1: ये लड़का है
0: उजाला रेडियो के जरिए। बाकी की फरमाइश आप सुन लेना, बाकी की फरमाइश ना तो कमर्शियल ब्रेक जरूर सुन लेना। परिवार गोपी परिवार जंगी दोनों परिवार को जो कल मिलने को जा रहे हैं बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश हम जारी कर रहे हैं वैसलिया काश गोपी एंड सुरागनी जंगी के वास्ते। कल इन दोनों के विवाह संस्कार होने वाले हैं और इस विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर इस बार नहमा को फरमाइश कर रहे हैं मामू रॉय चैन सुख प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना और प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ।

Goals. Zinnetje, Solitaire Michael, Vesliya Kaasgopi en Dulhan Rani, Suragni, Jangi ke Vivah Sanskar hai. Is khushi ke mauke per mamu. रॉय चाइनसुक प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ फरमाइश के वैश्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर नाहमा को फरमाइश कर रहे हैं मामा अनीता हरकिशन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाइयां शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ शुभकामना के साथ पेश किया जा रहा है

कल जबकि शनिचर 16 तारीख में है तो बोधग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी और रोतदम के रहने वाली सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार हैं। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली अपनी प्यारी प्यारी होने वाली दुल्हरानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल है खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करे हैं प्रोग्राम में। दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश है।

कल जबकि संजय 16 तारीख में है 16 मई है तो बोधगया के रहने वाला है वैसली आकाश गोपिका विवाह संस्कार है और रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नवा को फरमाइश के यू आर उजाला रेडियो यहाँ सुन वाला और प्रोग्राम में फरमाइश जारी किया जा रहा है और भी खासकर परिवार गोपी के वास्ते कल जबकि शनिचर है और कल बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संस्कार होने वाला है बौद्ध खराफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपिका रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर मामा अनीता हर किशोर ए पापा जेरी गोपी प्यार प्यारा बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश है

कल जबकि शनिचर है तो कल बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि कल विवाह संस्कार होने वाला है और भी खासकर विवाह संस्कार होने वाला है बोधग्राफ के रहने वाला है दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपिका और रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिसुन एंड पापा जैरी गोपी प्यार प्यार बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कियों की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नामा

आखिरी फरमाइश आज के प्रोग्राम में हम ला रहे हैं वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के वास्ते। इन दोनों के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं खुशी के मौके पर। दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी और दुल्हन रानी सुरागनी जंगी एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, दिलो जान के साथ फरमाइश करें।

जबकि शनिचर है 16 तारीख मई को, तो बोध खराब के रहने वाले दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी का विवाह संस्कार होने वाला है। रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के उपलक्ष्य एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश के। परिवार गोपी आज के वास्ते फरमाइश को हम रोक देते हैं, कल के प्रोग्राम में बाकी के फरमाइश दिन में 12 बजे से लाया जाएगा, जरूर सुन लेना। आज के वास्ते एक शुभ रात्रि शुभ शाम समस्त परिवार गोपी समस्त परिवार जंगी को ये विवाह संस्कार बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: जिया ना भाव।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला पिंडनेल। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियां दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ